0: Что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
1: Hello, hello, hello, hello. Mic testing. What happened, Johnny?
2: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी girlfriend मुझे छोड़के भाग जाती है. कुछ नुस्खा बताइए.
1: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा, तो यही होगा. You are बोका चोर. चालू करो. One.